पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले

है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम।

टाटा यहाँ, नमस्ते को कहते हैं टाटा यहाँ। अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा। ये जिसको बुलाएं करें

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला ला रहे हैं द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड रैग एंड रिदम नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा के साथ 19 सितंबर मेरफाट थिएटर में कोप की टिकट्स ऑफ टाइट फिया मेरफाट.nl और गाने वाले होंगे फ्रॉम इंडिया माउस म्यूब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयक दत्तादीन एंड निजाम वाकी हुसैन 19 सितंबर मेरफाट में कोप की टिकट्स ऑफ टाइट

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

तू, क्योंकि सावन आया है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं एंड न्यू श्रेया घोषाल एंड शॉन। मुझे तुम से मोहब्बत है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यारे सुनमलू, आप हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे, हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं आज का प्रोग्राम में उजाला रेडियो का। दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 0 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं। उजाला रेडियो का दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 9-10 से लेकर शाम में 3 बजे तक। फन मांदा तो तुम्हें सांदरख फन 3 उर्स मोरखस तो 3 उर इन द मिदाख। और हमारा वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा।

बलियार ऐसा लग रहा है कि प्यार हो रहा है, लग रहा है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा।

वेल यार हमको हमी से चुरा लो। उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं।

हम तुम्हारे हैं सनम एंड कसम की कसम की ना जुदा होंगे हम। और हर की तरह कसम की कसम दी है कि हम तुम्हारे हैं सनम ना जुदा होंगे हम। सूरज हुआ मध्यम यार

0: सूरज हुआ मध्यम और सजना क्या ये पहला पहला प्यार है मेरा। अविश्वरों से सोनू निगम एंड अलका याग्निक जी के आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे।
1: मेरा पहला पहला प्यार है
0: और बोले सजना ये क्या मेरा पहला पहला पहला प्यार है यार।

मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ, बोले जानम देख लो मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। अभी सुनो से खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और कितना मोई कितना विशाल है, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ जानम देख लो।

0: वलियार तारों का चमकता गहना हो तुम। आओ इस तरह से उदित नारायण की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष, आप हरी को शुभ दिन। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाना का बोल होंगे
1: मैं भी हूं,
0: तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें

यार, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। जब भी कोई के देखा, जब भी कोई के मैंने चाहा।

बलियार लड़की लड़की बड़ी अनजानी है और बिल्कुल बिल्कुल न बदला। और इस तरह से अलका याग्निक एंड कुमार सानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे।

ब्रिंग दे रोटी मान, ब्रिंग दे रोटी, निशाद सुल्तान की आवाज में फ्रॉम द वेस्ट इंडीज और उजाला रेडियो पर आज का प्रोग्राम में पेश की गई है।

हम होइगे गुलरी के फूल। इस गीत को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये जानना चाहिए आपको कि इस गीत को गाई है 9 साल की बच्ची साक्षी सुखा, जिसका नाम है साक्षी सुखा सुखा साक्षी सुखा नई खन यार औत। आप सुने और तुड़ुक न्यूनाडो वेस्ट इंडीज।

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

सुनने वालों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उजाला रेडियो का ये संगीत का सफर बहुत जल्दी आपके साथ हम जारी करेंगे।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ब्रांस फैंस में अगर आप आएंगे पूरा परिवार के साथ आएंगे तो बच्चों के वास्ते फॉर किंडरगार्टन टॉट 1 मीटर ग्रेटस आप अंदर जा सकते हैं। आ रहे हैं आपके लिए द बैंड का गायक स्टीवन केदार।

0: Blues Routine. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

ये अनकहीं से है दास्तां, मैं तन्हा रह गया क्यों यहां। बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, मोय लवली गाना, द स्टेम फॉर अली खान, और गाना का नाम है जाने ना तू, एट द कोक स्टूडियो पाकिस्तान।

आठ बजकर 9 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन रामदुलारे पांडे। सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज़। 13 तारीख अगस्त है, 2036 और कुछ हफ्तों के बाद आज फिर एक बार मौका मिला है प्रोग्राम सजाने बनाने के लिए आप सभी के लिए दिल की आवाज। तो यहां से ये प्रोग्राम हम आराम करेंगे और रात्रि में 11 बजे तक आपका दिल हम बहलाएंगे विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और उनके साथ साथ भी कुछ दर्द भरे नगमाएं जो आज की प्लेलिस्ट में शामिल है। तो बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम आज हम फिर एक बार सजाएंगे कि आप सभी सुनते वक्त भी आनंद प्राप्त करेंगे और आप मजा लेंगे नगमाओं के साथ। मेरे प्यारे सुनने वालों, प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट बनाया जा रहा है उजाला रेडियो के स्टूडियो रतनम से और हमारे प्रोग्राम के दौरान अगर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातें भी करना चाहोगे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 03 3 0 0 0 3 3 0 0 0। और है आपके फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी कामकाज है आप उजाला रेडियो के जरिए करवाना चाहोगे तो आप कॉन्टेक्ट करें दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर, सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो दफ्तर को 02409 0807 02409 0807। या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार आपके कामकाज के लिए आप मेल कर सकते हैं, आपके जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेल कर सकते हो info@ujala.nl। मेरे प्यारे सुनने वालों, शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए और तहे दिल से स्वागत भी करता हूं। ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, एक जबरदस्त पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग, एक नगमा जो आज भी चलेंगे तो आप यकीनन एंजॉय करेंगे। आनंद बख्शी जी जो एक महान कवि है, सॉन्ग राइटर है, तो इस शायर के हाथों से लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग गाएंगे राजेश रोशन के साज और संगीत पर किशोर कुमार। कि दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। एक शुभ रात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय यू आर, एंजॉय दिस सॉन्ग, एंजॉय दिल की आवाज।

दिल क्या करे जब किसी से और किसी से प्यार हो जाए। और क्या गा रहे थे किशोर कुमार की, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है और जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे भी किसी चेहरे पे निगाह रुकती है और ये नजर जो है रोक नहीं सकती ये दुनिया भर के रस्में। बस में ना मेरे कुछ है, बस में ना तेरे कुछ में है जुली, यही होता है जब किसी से प्यार हो जाता है। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे से नॉल रोमांटिक सॉन्ग आप तक हमने पेश किया है। आज का ओपनिंग सिलेक्शन फ्रॉम द मूवी जूली। फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है स्टेशन का नाम, प्रोग्राम का नाम दिल की आवाज। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। शुभ रात्रि आप सभी को हम स्वागत करते हैं और आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार। समीर का लिखा हुआ गीत और आप सुनेंगे साधना सरगम एंड द टाइगर कुमार सानू की मेरी दुनिया में आना न जाना फिर सनम।

मेरी दुनिया में आना ना जाना कभी फिर सनम, और मुझे अपना बनाना ना जाना कभी फिर सनम। खूबसूरत प्यार की बयान जो मिलकर गाए हैं, ये खूबसूरत गीत जिसकी एक एक शब्द समीर जी ने लिखा, साधना सरगम और कुमार सानू। पायल फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों, पायल। दिस इज यूआर और 7 मिनट बाकी है इस तरह 8 बजने में। दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.ujala.nl पर जरूर एक बार एक झलक आप दिखिएगा। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद असीस, इन दोनों की आवाजों में गीत खूबसूरत मैं पेश करने जा रहा हूं। तन मुठकी व क्या एक वार है पिकम, वार है पिकम। ये लाइफ है मेरे प्यारे सुनने वालों, और कभी कभी गीत अनाउंस कर देता हूं और भूल जाता हूं उन्हें खैर रखने का। ये फिल्म पुलिस और मुजरिम का एक नगमा अनजान साहेब जी का लिखा हुआ, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजें।

रोशनी तू है मेरी, हर खुशी की तू रोशनी है, तू मेरी हर खुशी तू है मेरी, तेरे बिन कैसे जिए जिंदगी, तू है मेरी। तू अगर मेरी मोहब्बत की पाक लैला है, जलवे हुस्न तो मजनू को दिखाना होगा, चाहे रोके ये जमाना, देखो तुम्हें आना होगा। वैसे तो ये गीत दर्द भरे गीत में गिना जाता है, लेकिन अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा में कितनी भी प्यार इसके अंदर में है, इन अल्फाजों में है, और एक दूजे को बयां करते थे मिलकर मोहम्मद असीस और कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म का नाम पुलिस और मुजरिम। मेरे प्यारे सुनो लो, पुलिस और मुजरिम का नगमा। हॉट स्टेशन यू आर उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनो लो, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं, और एक भूले हुए लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत सेवा में पेश करने जा रहा हूं। एक नगमा जो पटमा सखदेव जी ने लिखा, द लेजेंड सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज, और साथ देंगे सुलक्षणा पंडित। सुना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, अंबुआ की बगिया झरना की नदिया, बस कहो कहां मिलूं। Enjoy this song, मेरे प्यारे सुनने वालों।

सोना रे तुझे कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, अम्बुआ की पगिया, झरना की नदिया, कहां मिलूं जरा बोलो, तुझे कैसे मिलूं। रफी साहब जी और सुलक्षणा पंडित जी की आवाजें, पद्मा सखदेव जी का लिखा हुआ ये गीत, एक भूला हुआ हीरा सेवा में जो हमने पेश किया है, पद्मा सखदेव जी का लिखा हुआ और फिल्म का नाम आंखें देखी, आंखें देखी फिल्म का नाम। एंड दिस इज शान, मेरे प्यारे सुनने वालों, शान और कविता कृष्णमूर्ति, हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज में।

अपनी पलकों में मुझको छुपाया है और एक चेहरे ने मेरा चैन चुराया है। हर तरफ शोक मौसम का साया है और इन हवाओं ने मेरा आंचल उड़ाया है। दिल में जो छुपी है एक दिल रुबा है और ऐसा लगता है कि प्यार हो रहा है। मेरी ये बेकरारी में भी कितना मजा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्यार हो रहा है। बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग प्यार भरे नगमा समीर जी के हाथों से लिखा हुआ और मिलकर गाए अपनी खूबसूरत आवाजों में शान और कविता कृष्णमूर्ति। दिल है तुम्हारा फिल्म का नाम मेरे प्यारे सिनेमालो। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सिनेमालो। और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 14 मिनट बाकी है 9 बजने में। जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ है कि चलो सुनाते हैं आप सभी को एक नगमा जो उदित नारायण और अलका याग्निक, हाँ जी अलका याग्निक मिलकर गाएंगे। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं,

फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण द नेम दैट स्पेल्स मैजिक और अलका याग्निक ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम दिल चाहता है। घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं तो वक्त ऐसे है कि एक आखिरी गीत मैं पेश करूंगा। इस आखिरी गीत के बाद 9 बजे के ब्रेक होंगे, इश्तिहारे आप सुनेंगे और उस पार ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर मिलेंगे। संगीत की देवी लता जी को पेश करता हूं सुरेश वाडकर जी के साथ और दोनों मिलकर गीत गाएंगे आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लिखने वाले ने लिख डाले। मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे से नॉलो। एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अर्पण।

किसको यहां अपनी खबर, दिल पे हुआ है ऐसा रुत का असर, आग में आग लगाए रे पानी और फिर से बनेगी कोई प्रेम कहानी, ये मौसम प्यास जगाए हाय। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और अपनी खूबसूरत आवाज में गीत जो मदन पॉल और रविंद्र रवेल ने मिलकर लिखा, अरुण बख्शी ने गाए हैं। अरुण बख्शी जी की आवाज बहुत खूबसूरत है और इनकी खूबसूरत आवाज में ये नगमा फ्रॉम द मूवी प्यार दीवाना होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, पौने नौ का वक्त है और स्वागत करता हूं आप सभी को फिर एक बार। उजाला रेडियो है ये, लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम दिल की आवाज, और प्रोग्राम रात्रि में 11 बजे तक हम पेश करेंगे। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार फिर एक बार और आदाब से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम में प्यार भरे नगमाए पेश हो रहे हैं और कभी कभी कोई डर भरे नगमा भी हम उसमें शामिल भी करते हैं। आखिरी घंटे में हम बढ़ चलेंगे द 70s और द 60s की ओर, कुछ पुराने गाने। फिलहाल तो हम आपको सुनाएंगे एक नगमा द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, जिनकी बहुत सारे नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों अमर है, और इनका एक रोमांटिक सॉन्ग हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में आप तक पेश कर रहा हूं हीर ऑन यू आर।

मुझको जगाया, सोने ना दूंगा तुझको, हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको, कोई प्याम लूंगा, कोई प्याम दूंगा, और तेरी कसम ना कुछ भी तुझसे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपनी दिल की तुझको सुनाऊंगा मैं, तेरी कसम ना कुछ भी तुझे छुपाऊंगा मैं, हर बात अपने दिल की तुझे सुनाऊंगा मैं, लेकिन जुबान के बदले आंखों से थाम लूंगा, मेरे हसीन का दिल मैं तेरा नाम लूंगा। बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग जो आनंद बख्शी जी के कलम से लिखा गया है, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम बेमिसाल। Eileen uit Haarlem, dankjewel Aapke Epkelie. En mevrouw Sushila Chandrika Singhji uit Amstelveen, dankjewel Aapke Epkelie. Amsterdam ka Ivy, dankjewel ook voor je appje. Aur abhi dekhenge ki aur kaun hai jo appki hai. In ieder geval, abhi se aap sabhi priye sunne walon ko aur appers ko dil se धन्यवाद। समीर द शायर ऑफ द 90s, इनके हाथों से कितने सारे नगमाएं लिखा गया है मेरे प्यारे सुनने वालों। हिट सॉन्ग्स, द 90s के सॉन्ग्स, जो भी आप पसंद करेंगे यकीनन ज्यादा से ज्यादा समीर जी ने लिखा। इनका एक नगमा जो मिलकर गाएंगे, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक। ऐसा होता है ना कि किसी को देखकर आपके दिल के तार जो है और धड़कने लगता है, धड़कन तेज होते हैं, और खास करके जब वो सामने आते हैं और कुछ आपसे कहता है या स्माइल करता है, कुछ भी, ये वही 12 बातें पटोलता है। उदित नारायण जी और अलका याग्निक। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरे धड़कन ने कहा आई लव यू माय रानी, आई लव यू माय राजा।

आया, जादू कोई जाने लगा है और मुझको मजा आने भी लगा है। बस में नहीं है अरमा, मुझे सीने से तू लगा, किस मी आजा। ओ माय गॉड, नजरें मिली दिल धड़का, मेरे धड़कन ने कहा कि आई लव यू माय रानी, आई लव यू राजा। एक दूजे से बहुत ही प्यार के साथ बयां कर रहे थे, प्यार का इजहार कर रहे थे इस गीत के जरिए, जो समीर ने लिखा है एक एक शब्द और मिलकर गाए हैं द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनो राजा, राजा फिल्म का नाम और स्टेशन का नाम है उजाला रेडियो, प्रोग्राम का नाम दिल की आवाज। मी माई सेल्फ, मैं रतन हूं और घड़ी की तरफ मैं देखूं दाने सत एन मिनट ओवर द क्लॉक फन हाफ तीन, साढ़े नौ बजकर एक मिनट गुजर चुके हैं। संगीत की देवी लता जी को पेश करता हूं, निरा फासली जी का लिखा हुआ गीत संगीत की देवी लता जी गाकर सुनाएंगे। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है, नींद जहां खुलती है ख्वाब पिघल जाते हैं।

संगीत की देवी लता जी की आवाज। मेरे प्यारे से नौलो प्यार, तू एक सपना है, दर्द ही अपना है, नींद जहां खुलती है ख्वाब पिघलते जाते हैं। ये दर्द भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, निदा फाजली जी जो एक महान कवि हैं, शायर हैं, इनकी हाथों से, इनकी कलम से लिखा गया नगमा संगीत की देवी जी ने गाकर सुनाया। स्वीकार किया मैंने, फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने। अम्सरम सिंड्रोम का प्रभा जी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, फैन कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। और नतुलक हम धन्यवाद थैंक यू वेल भी कहेंगे मार्स ब्रुक का, हिरेंद्रू जी और चित्रा जी, ओग्युली बडंग धन्यवाद, आश्रीना मंगरे जी, अद ब्रीदा बहुत बहुत थैंक यू वेल धन्यवाद आप के ऐप के लिए। बस आप भरपूर एंजॉय करें, इसी कोशिश में हम लगातार हैं, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलेंगे। द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी, इनकी हाथों से लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत जो द नेम दैट स्पेल्स मैजिक उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल मिलकर गाएंगे, कि तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों, www.pintujala.nl।

जहां तू चाहा, हम तू मेरी जहां वारेंगे तुम पे जिया। वो आगे हमें क्या काहे को सोचे, कोई भी हो तुम पिया, तुम संग जीना ओ साथिया, क्योंकि तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव। और ये आवाज देता हूं दिल से माय लव। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये प्यार भरे शब्द द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी के हाथों से लिखा गया है। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि लिखने वाले के हाथ तो से जो इनके हाथों से जो लिखा हुआ ये खूबसूरत शब्द है। उदित जी और अनुराधा पौडवाल जी ने गाए हैं अपनी खूबसूरत आवाजों में। हम उन्हें याद करते हैं, पर्दे पर देखते हैं और देखते हैं कि स्टार्स किस तरह से अपनी जुबान हिलाते हैं, और इस गीत पर जिस तरह से जतिन ललित ने अपनी संगीत दिया है वो भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, और ये फिल्म बनाने वाले भी हम भूल जाते हैं। वेद आ राजेश खन्ना का एक गाना है, शाहरुख खान का एक गाना है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये गीत लिखा। और मजरू सुल्तानपुरी जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हजारे नगमाएं हैं ऐसे जो आप पसंद करते हैं। माफ वारफानी में इसकी नीत वेद कि किसने लिखा है, शायद आप जानते होंगे कि किसने गाए हैं। नट्यूलक आप ये भी जानते होंगे कि परे पर्दे पर कौन है वो स्टार, वो कलाकार जिन्होंने गीत पर होंठ हिलाए हैं। लेकिन बजाने वाले, लिखने वाले और फिल्म बनाने वाले हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पांच उंगलियों से एक मुट्ठी बनता है। कोई फिल्म बनाता है, कोई गीत लिखता है, कोई ढूंढ देता है, कोई गाता है, उसके बाद भरे पर्दे पर कोई उसे रूप देता है। मजरू सुल्तानपुरी जी, हैट्स ऑफ। बहुत सारे इनके गाने लाजवाब बेमिसाल है, अमर संगीत इन्होंने लिख कर दिया है। और ये था नगमा फ्रॉम द मूवी यारा दिलदारा। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। और मैं देखता हूँ 14 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, और ले चलता हूँ आपको समीर का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग। प्यार हो जाए तो इस तरह के नगमाए दिल से निकाल आते हैं जुबां पर। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जी, इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में ये नगमा आप सुनेंगे। जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे, हमारा मिलना है जरूरी मेरे सनम।

जो हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे, है मिलना जरूरी हमारा सनम, जान की कसम। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो वालों, रोमांटिक सॉन्ग अल्फाजे शब्द समीर का, और मिलकर गीत गाए हैं द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल। जान की कसम फिल्म का नाम, जान की कसम। मेरे प्यारे सुनो वालों, आखिरी गीत इस घंटे का, और इस आखिरी गीत के बाद 10 बजे के इश्तिहारे ब्रेक आप सुनेंगे, और ब्रेक के उस पार हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा, क्योंकि रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। एंड दन गाँव द यार 70 इन एंड द यार 60, ठीक है। आखिरी गीत इस घंटे का समीर का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी कम रोमांटिक नहीं। What a song from the movie राजा हिंदुस्तानी, अलका याग्निक की आवाज। कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। Enjoy this song मेरे प्यारे सुनो वालों, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर शादी के नाम से डरती हूँ। तो प्यार करना है तो कर, लेकिन शादी नहीं करूंगी और रहेंगे हम कुंवारी अपनी ये उम्र सारी। मैं तो हूं महबूबा, मैं क्यों बनूं किसी की दुल्हन। हमने तुम में दोस्ती, हम क्यों बने दुश्मन। मैं सपनों की रानी हूं, मैं कोई दीवानी हूं। है ऐसी मस्त बहारों में कैद, रहूं दीवारों में क्यों। मुझे ये आजादी अपनी बहुत प्यारी है, तो भैया आई एम सॉरी। हकीकत में भी होता है मेरे प्यारे सुनने वालों, लोग प्यार करते हैं, सामो न करते हैं, लेकिन ये नाम शादी के नाम से डरते हैं। निकला तो मिड, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ग्रोन ऑफ द लिफ्ट, कोई किसी के नाम से आगे जीना चाहेंगे। एक लात ताला वाले मेरे अति सीधे इंसान कोई एक बेन नार फ्राई ओपन मार। एक फिन सेल्फ दैट इधरेन मुट लीव इस वॉल्स विल। और ये था एक खूबसूरत प्यार भरा नगमा संगीत की देवी लता जी की आवाज में, जो आनंद बख्शी जी ने लिखा है, फ्रॉम द मूवी वॉरंट से, जो हमने निकाल कर आप तक पेश किया है। मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ, धनी सताल बैन देर तीन मिनट ओवर द क्लॉक फन तीन, ऑलमोस्ट 13 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर। मतलब ये कि इस प्रोग्राम दिल की आवाज के आखिरी घंटे में हम आन पड़े हैं, क्योंकि रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और इस आखिरी घंटे में द 70s और द 60s में हम इस तरह से नगमाएं निकाल निकाल कर आपको झुलाएंगे, कभी द 70s में तो कभी द 60s में, और शायद भी द 50s में भी चले जाएं। वुहान सीन वोट लो, वक्त बहुत ही कम है मेरे प्यारे से लो, जैसे मैंने कहा 11 बजे तक आपका साथ मुझे देना है। तो मैं पेश करता हूं अगले गीत, ये गीत जो द हार्ट ऑफ मिलियंस महती मुकेश जी गाकर सुनाएंगे, एक नगमा प्रेम धवन जी का लिखा हुआ और डर भरे नगमा में गिना जाता है। मुकेश जी क्या गाएंगे और प्रेम धवन जी ने क्या लिखा है कि वफा जिनसे की बेवफा हो गए।

0: वफा दिन से
1: जो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे समाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे वही आज हमसे जुदा हो गए वफा जिनसे की बेवफा हो गए और वो वादे मोहब्बत की ये क्या हो गए दर्द भरे गीत मेरे प्यारे सिनोलो प्रेम धवन जी का लिखा हुआ द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी की आवाज और फिल्म का नाम प्यार का सागर दर्द भरे गीत के बाद मेरे प्यारे सिनेमा एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग हमारी लिस्ट में जो है बहुत सारे गाने हैं और कहीं ना कहीं ये गीत भी शामिल है आशीष कश्मीरी जी का लिखा हुआ ये नगमा हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज और आप सभी के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी तरफ से आप सभी के लिए

जो मिले तेरी मोहब्बत मुझे ये जिंदगी के बदले, तो मैं खरीद लूं उसे हर खुशी के बदले। वही देखा तेरा जलवा जहां सर झुका के देखा, और ये गजब किया जो तूने कि तूने मुझे मुस्कुरा के देखा। अब मेरे दिल में बस तू ही तू है, मेरा ये ऐतबार कर ले, और जो ये सच है मेरे साथ ही तू जरा हम मिलकर खुल के प्यार कर ले। रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, आसीस कश्मीरी जी का लिखा हुआ एक एक खूबसूरत प्यार भरे शब्द हसीनों के पुजारी किशोर कुमार ने गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम द इंटरनेशनल क्रुक, इंटरनेशनल क्रुक। और मैंने क्या कहा था पिछले घंटे में कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को देखकर, बस देखकर दिल की तार थरथराने लगते हैं, धड़कन और तेज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को देखकर आप के दिल और दिमाग ये कहने लगता है कि बस तुम ही तुम हो जिसे मैं चाहता हूं। खूबसूरत गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, द ग्रेट शकील बड़ायूनी जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग, सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइनटिंगेल आशा जी गीत मिलकर गाएंगे कि जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो।

जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, और हम भी यही कहते हैं कि सांसों में तुम ही तुम हो। और आगे देखो ना, ये प्यार का दिन बेखुदी छाने लगे, मस्तियां झूम उठी और जिंदगी मेरी ये गाने लगे। बहुत ही प्यार भरा शब्द है, अल्फाजे हैं शकील बरायूनी जी का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुनवालों, और अपनी खूबसूरत आवाजों में सुरों का बादशाह द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी ने मिलकर गाए हैं। घराना जो एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है, ये फिल्म का नगमा आप तक हमने जो पेश किया है। एक मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनवालों, सरे 10:01 ओवर द क्लॉक फन हाल एफ उजाला रेडियो पर आप अभी तक चून किए हुए हैं, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। मेरे प्यारे सुनवालों, आपको मालूम भी ये रहे कि आने वाले शनिवार दैट इज ओवर मोर्ग 15 अगस्त को बहुत सारे हफ्तों के बाद मौका मिल रहे हैं आपका सेवा करने का। रात्रि में 7 बजे से 12 बजे 5 घंटे लगातार चले आएंगे स्टूडियो रतनाम से, पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एक लोकल प्रोग्राम है जिसमें लोकल सॉन्ग्स हैं, जो लोग सुनते हैं उन्हें मालूम है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नए और पुराने लोकल सभी उस प्रोग्राम में शामिल है। और जो लोग साथ देंगे, ऐप करेंगे, हाय हेलो कहेंगे व्हाट्सएप के जरिए, तो उन सभी के नाम से भी मैं गीत चलाऊंगा। अपने ही लिस्ट का एक नगमा दुश्मन टिटल स्टोर खीव, आप सिर्फ यही कहेंगे हाय हेलो, आपका नाम, आप कहां से ऐप कर रहे हैं, और विलियन स्नेलो नंबर ऑफर रुस्तख नंबर। तो आने वाले शनिवार मिलकर हम और आप फिर एक बार कुछ हफ्तों के बाद सजाएंगे बनाएंगे खूबसूरत सैटरडे नाइट फीवर। En zoals het ernaar uitziet, de komende 8 tot 10 weken, elke zaterdag, Saturday Night Fever live, op jullie, UR, Ujala Radio. Hamari priye jo hai, mere pyare sunwalo, kavi shayar, likhek, Sahil Ludhianvi ji, inka ek shikwa shikayat song, pesh karne ja raha hoon. इन्होंने लिखा है और लता जी संगीत की देवी सहिर जी का लिखा हुआ गीत गाएंगे कि जब ही जी चाहे नई दुनिया बसाते हैं लोग। एंजॉय दिस डट भरे नगमा लता जी की आवाज़।

जब भी ये जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। डट भरेगी छिकवा शिकायत सॉन्ग सहिल लुधियानवी जी इनकी कलम से लिखा हुआ और संगीत की देवी लता जी की आवाज। फिल्म का नाम दाग। मेरे प्यारे सुनने वालों दाग। मफराउ एन मनेर बिहारी जी ब्रीदा बहुत बहुत धन्यवाद आप कैप के लिए। आप एंजॉय कर रहे हैं नगमाओं के साथ मजा ले रहे हैं ये सुनकर आज मेरा ये दिल फिर एक बार खुश हुआ। अब की बार मेरे प्यारे सुनो राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत मैं पेश करने जा रहा हूं। डर्ट भरे गीत के बाद चलो एक रोमांटिक सॉन्ग, एक रोमांटिक सॉन्ग जो फिर एक बार मिलकर गीत गाएंगे। सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी कि कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम चाहे समाना करे लाखों सितम। क्या बात है।

भी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम, प्यार भरे नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी इनका लिखा हुआ और जो मिलकर गाए, सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको मालूम रहे कि जैसे मैंने कहा, आने वाले शनिवार आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम 5 घंटे विद ब्यूटीफुल लोकल्स। 15 तारीख अगस्त को आने वाले शनिवार रात्रि में 7 बजे से 12 बजे, तो आप सादी एंड स्टूडियो एपियस नाड स्टूडियो, और आपके नाम से भी हम लोकल एक चलाएंगे जरूर से जरूर। वैसे तो जैसा प्रोग्राम में प्लानिंग में हम देख सकते हैं, तो आने वाले 8 या 8 तो 3 वीक लगातार आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। बुधवार को, गुरुवार को और शनिवार को कुछ बीच ना आए तो तीनों दिन हम प्रोग्राम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए। बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका दुआ और आपका प्यार चाहिए। अगले गीत मेरे प्यारे सुन वालों, एक शराबी वाला सॉन्ग है, दर्द भरे गीत है। और जब दर्द होते हैं तो बहुत सारे लोग देवदास बन जाते हैं। अफसोस, जिंदगी खत्म नहीं होता है, एक प्यार अगर बिखर जाए, टूट जाए तो बहुत अफसोस की बात है। दिल को ठेस जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आपको ताकत होना चाहिए आगे जाने के लिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे दुखों का सामना हमें करना पड़ता है। और हम अगर हार जाएंगे तो जिंदगी आगे नहीं चल पाएंगे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुस्तरंग थैलप नीत फिल्म मन्ना डे जी की आवाज और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं हीर ऑन यू आर।

मरने से पहले कौन मरे, फिकर जुबा कि कौन करे, गम की रात से कौन डरे, अभी तो सुहानी शाम है और हमारे हाथ में जाम है। दर्द भरे गीत मेरे प्यारे सुन लो, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, दादा मन्ना डे जी की आवाज, सीता और गीता फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुन लो, अब आप सभी से हम आज्ञा लेना चाहेंगे, मैं एक दो नगमाएं और चलाऊंगा, लेकिन अभी से आप सभी प्रिय सुन वालों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज के लिए आप सभी ने साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया। और ये प्रोग्राम दिल की आवाज अगले हफ्ते 20 तारीख अगस्त को फिर हम सजाएंगे बनाएंगे हियर ऑन यू आर। मारना त्योलक, जैसे मैंने कहा, आने वाले शनिवार 15 तारीख रात्रि में 7 बजे से 5 घंटे लगातार 12 बजे तक पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। आज के लिए जाने से पहले यही कहूंगा कि रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज, टेक केयर और रिमेंबर आई रियली लव यू ऑल, बाय। मुकेश जी।

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

की रो रहा हूं मैं। या मोय है अंकित तिवारी, अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म आशिकी 2 की सुन रहा है तू, सुन रहा है ना तू कि रो रहा हूं मैं। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जुबिन नौतियाल की आवाज में अब गीत पेश है, सुनिए।

एंड तुझे कितना चाहे और हम, जुबिन नौटियाल की आवाज, फिल्म कबीर सिंह का गीत, और उजाला रेडियो, और हम और आप

Ash King and Shasha तिरुपति से गीत को आप सुने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड अनु अरिजीत सिंह